0: गिलास तुम कुफा भी
1: दिफकिन मस चपकन तुम्पन असवा जान तो चांच विता नोला रेक ओच फितेन का मिकुरियां अच्छ का मितोव मार नि फोक फरिंग अति फोक चेक पम नाच कराज नस कराज नरेक के तफ्रेक चंग अतिन फोक फोट जुगन सेक फोट मेना मेंच नि लोक न सेक कति वो फाफा फो त्याको नो त्याको इस त्याको मलोंग अति कलोन त्याव कुन याफा वेलुन तंग अतिन फंग अम्प्यांग नंदाल फियावान हस तोक न चिंबा आल चिस मन गन आम फो चारन मि फंग आम ओहच नम फिसिंग स्न बार फो जेच मे सुबिक माई फंतंबा अगजे मन बाद लाव चि मिंजान तोहच वेलुन तंग अतिन फ्रेस अंक्यांग फिताकाल फिताकन फंग त्याव न तो ओफंग फोजे मकोल चेंग मलागास मानन कास चंग चिम से वाचका सेच मलिंग क्या लोफंग मंदोन चाचे मिरे हरे फो गास ता तोबे जाजा गास तेरा गास फो ओचुन मेन कान आचुजान तम राजंबे नि आज नुवान कुलाकन तन ननरियन चार गास चार फरा नि कांत कि तोंजा म्याक अम फंता कोनांत फतन नि पुगो कि गास सिकार अरो वक चवोच ति फोक फेफंगा ति फोक दोस कोम नंगा से चतन जाजक के ना मलाजमेंट ओच सा इंग ति मंगिन मंदोन चाचा मरे हरे फो जातो ति मेंग चका गाजक
2: नरीरे रीरन सासन फोतन नि सासन ति मफंतटन लांजन ते लांजा लांजा नि फोक को इंपितना मतकन लेल को मंगिक फो मवेस तन फतेवा को नांजी के त्याकुजा त्याकु अनो त्याकुजा रियो दे त्याकु चीका सचारा नि आनत देन फिफंका त्याफंग सिफंगा जंगन फियावाना मंपियावा कचीका के त्याकु माइता गासम जरातसिक अंगतन फलियांगा मारावरावु माइता सूर कमलांजा तुंट मामिंद्र म्यार कंगतन फाओरियांगा के चरियाकु मा अगास्याना ना देम न्याफासा गास मिदीका फेरी मामेंग तस्मिदसीटंगा गासे असंद्रातन पेलतांगा फराकुलचेंगा चिकेच तुकुनी इंद्रगा गासे असमंगिकन देवुजन वोला फनी वोला तुम पियावंग फमां परितका
3: ए गासे
2: तुआंग नुरुंबातुन फुंबचिका fa aza tuto fa paska fa mitadiny verany ka mana iregna azambidiny tandrazagna taninao fa lasa tsisy livegnana antaranake ovao rano balany fa valinao mba tsy hanimbany hasina tokony anaranake aza matahotra fa zagna ary ninao koa tsy hagnampy anao ny magnitrindrignany hafa e aza miagnatra karazagna mandomatratra mireha fa gasy
3: iakale
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कफाफी
1: सूतु सूतु साने ने रजकल मंदे मंदी के नाम मत आकाश के आराम पिस्तले तम से बिकूं तू चला रहे हैं नाना का तीन नाना का काम रहे हैं तीन नाना के अनु ना फिक्री जानी जलू रिस के जान कों को रिस के जान को वा ये जन ते जान मंदी के नाम मत आकाश के आराम है ये जन ते रिस के जान पा नज़े वा फिक्री जान मान लेकिन फिर से देसाना को दे मनारा का नास वो सेमु जान ले फिर देसाना दे वो मनारा का नतीन दे ए देमरा रे नास तब फिर तो हम तांग मिरी जाने फ्रेंड्स आप दे दे
2: क्या ना काफी नासु तो फटा रा कौन सा ये ले फिर ना काफी ना जाने मासु तो वो ना चाफ चाल ले तीन रोबी तक के ना बुला चुना ये नो जाने
3: ए सूट सान ले वचने मुझे मादागास्कर सुनना ना कोई सूट तुम आते थी saya nak buat apa? Suatu jenis sih maaf telah cang suatu suatu sah sila suatu suatu saya nak kafina timnya nak cari syarat tu ngata ti tevala sah sih jam susah sih mula lah sah sih tu naik sendu. Saya mah pa yerena jauh yang zaman sah ni mah ta nazar aku sih ta tanjung nanti tunggawan ni.
4: Saya nak kafina suatu le ulan ada tungsa apa ni tiko nak ane ciri arah tevirna ni tiko. Arakan panrinwe te iteta Madagascar te sutun mitso san ye fankerezana wasere te mafinasha ne tonareo fa tena hoe makafit ko antilosy mamtsika ty izay tena hoe tsy manantsaly ty izany e tsy mitovy ny any velany fa manana ny tsika manokana tsika
0: sotra tombokola sotra tombokovavy.